और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू, ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर दाहू, और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्ता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है, उस

स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए। अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रियां आ गई, कब बाल सफेद हो गए। रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा। नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू ना कराही। बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही। किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने। बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा। तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं, अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचे मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार।

का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे, सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा, भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है, मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल, मन लग गया इस झूठ में अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो, कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षण भंगुर ये देह है,

झिली ना झिली, इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई मन लगाकर काम करो, हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो समय पर करो मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सच उपाय। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में, सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, उसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kurt Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके, है ना। जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें।

है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है? उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती है, है ना? अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट? जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, 100 रुपए में ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना? स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मुझे गड़बड़ लगती है, वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया, अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा लगा दो बियर लगा, ये करो कर, बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे ऐसा नहीं करे, लटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता है यार मैंने क्या गलती की, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो? तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है? मिल रहा है आपको जवाब? मिल रहा है? एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं,
तो उससे सीखो।

0: गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते. पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है. लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है. मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है. कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना. तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है. अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है. कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके. हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं. अपने आप को ये बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए. अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो. कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी. तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे. ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार. पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो. अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना?
1: माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट, हाउ शुड वन मेंटेन मेंटल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ माइंड इन सिचुएशंस ऑफ लाइफ एंड डेथ?
0: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है. जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही. मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती. अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना? वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना. आज हम खुद भी मर सकते हैं, तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो. ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं. ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर. आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है. तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ. अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें. उसके अलावा आपके आस पास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तभी आपके ऊपर असर ना हो. और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो. क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है. नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है. क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आया है, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता. मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए. मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है. वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं. बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे. नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है। हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम के जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे, जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों, मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना, कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना, खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना, जो हमारे थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है, सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है, आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है, फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है, फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है, कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स है, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो, फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, तो टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप पांचवें पे जाते हो, दसवें पे जाते हो, बीसवें पे। अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो, नहीं तो आप करोगे क्या, अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है, मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार होगा उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो, क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं। अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं, चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, लेट इट बी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए, तो देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है, जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो, बुरा लगेगा सुनने में, बट चिंदी बन जाते हो, समझ ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है, सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में, चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है, समझ गए। आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। एक बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली, अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो। आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है, अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकतें कर। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया, खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली, अरे मजा आ गया, खेल है, यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे हैं। रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं। क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गया ना। बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना। लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए। इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है। हो सकता है, बहुत आसान, देख सकते हैं तेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना, मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार। इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सभी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा। आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है। कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये गेम है, बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ? इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी, चाहे ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है वो, जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए? तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या? मैं बचा, यह मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता, कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा, समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाजनी बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हार सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: काफी स्ट्रेस।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों नहीं है, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात करते हैं वेदर अपडेट की। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 33 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 10 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी आपको 66%। इसी के साथ थंडर स्टॉर्म है आज, यानी कि बारिश अच्छी खासी होने वाली है। तो भाई यही बोलना चाहूंगी कि अगर घर से बाहर निकल रहे ना तो अपने साथ एक अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिए, बिकॉज मौसम का कुछ नहीं पता, कभी आंधी कभी तूफान कभी अच्छी खासी धूप। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।
2: उम्र के साल कितने हैं, गिन गिन के क्या करना,
1: क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजेन छे आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ फिलहाल मैं लेकर आ गई हूँ फिटनेस वाला फंडा। एंड फिटनेस वाला फंडा ना बड़ा ही सिंपल सा है। कहा जाता है कम नींद और वेट गेन का कनेक्शन आखिर है क्या, तो बस आज वही डिकोड करने आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए ना कम नींद की और वेट गेन की, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों का। आपको पता है सिर्फ एक अच्छी डाइट नहीं बल्कि बेहतर नींद फिटनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपनी नींद का ध्यान नहीं रख रहे ना, तो सॉरी टू से आप फिट नहीं है बॉस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी फूड को एफिशिएंटली यूज करने के बजाय फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है और बॉडी में आते हैं बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि स्लीप डिप्रिवेशन हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, कॉर्टिसोल और इंसुलिन इम्बेलेंस हो सकता है, एंड इतना ही नहीं हाई कैलोरीज क्रेविंग बढ़ सकती है भाई। तो देखा नींद पूरी ना करने से कितनी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है हमारी बॉडी में। सो स्टडीज के अकॉर्डिंग पुअर स्लीप का कनेक्शन वेट गेन और ओबेसिटी और डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज एक हेल्दी स्लीप टिप आपके लिए लेकर आ गई हूँ। 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश जरूर करें, लेट नाइट स्क्रीनिंग टाइम को कम कर दीजिए एंड साथ ही फिक्स्ड स्लीप रूटीन मेंटेन करें। बट हमेशा ध्यान रखें फिटनेस सिर्फ जिम और डाइट से नहीं गुड स्लीप से भी होती है। सो आज से स्लीप को ना करें इग्नोर, अच्छे से नींद ले, अच्छी से डाइट ले और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.67 मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

में ट्रेवल अब और भी ज्यादा पीसफुल होने वाला है, बिकॉज रात का सफर अब सच में सुकून भरा होगा। क्योंकि ट्रेवलर्स के लिए ना एक अच्छी अपडेट लेकर आई हूँ। इंडियन रेलवेज ने नाइट ट्रेवल को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रूल निकाल दिया है। अगर इस नए रूल की बात करें तो आइए चले जानते हैं आखिर ये नया रूल है क्या। तो भाई नया रूल ये है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई भी लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकता है, साथ ही फोन पर जोर से बात नहीं कर सकता है। सो दैट कि आपके साथ जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन में है उनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। और इसके फायदे बहुत सारे, पैसेंजर को पीसफुल स्लीप मिल सके, नॉइज डिस्टरबेंस को कम किया जा सके, साथ ही लॉन्ग जर्नी और भी ज्यादा कंफर्टेबल बन सके। तो भाई यही कहना चाहूंगी, पब्लिक प्लेस में कंफर्ट तभी पॉसिबल है जब सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करें थोड़ा वॉल्यूम लो रखिएगा और साथ ही दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। एंड इसी के साथ बस यही कहना चाहूंगी कि एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो हो सकता है अकाउंट गॉन। जी बिल्कुल, वेलकम बैक टू रेडियो मानेटी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। एक ऐसा पासवर्ड जो हमारे ना जाने कितने अकाउंट को सिक्योर रखता है, यानी कि एक दरवाजे के ताले की चाबी। जो अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो इसका मतलब है कि हमारा अकाउंट कोई नहीं छेड़ सकता, और जो अगर थोड़ी सी वीक हुई तो भाई टाटा बाय बाय। अगर बात करें सेफ्टी की तो डिजिटल सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है, ये तो हम सबको पता है। फिर चाहे बात हो फोन हो, सोशल मीडिया हो या फिर हमारा बैंक अकाउंट, सब कुछ यानी कि सब कुछ एक छोटी सी चीज प्रोटेक्ट करता है, हमारा पासवर्ड। लेकिन अगर आपका भी पासवर्ड 123456 है या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक अपना पासवर्ड बना रखा है, तो वही बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, समझ लेना कि आपका डिजिटल गेट खुला छोड़ दिया है आपने। स्कैमर्स के लिए, फ्रॉडस्टर्स के लिए आएंगे, आपका डेटा उड़ाएंगे और टाटा बाय बाय कर देंगे। सो माय डियर लिसनर्स, आज एक रियलिटी चेक लेकर आई हूँ, एंड रियलिटी चेक ये है कि जब भी हम बहुत इजी सा पासवर्ड रखते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पासवर्ड के तौर पर रखते हैं ना, तो वो हैकर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है गैस करना, और हमें लगता है कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं ना, हमारे जैसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो सेम गलती करते हैं, एंड इसीलिए एक कॉमन पासवर्ड पाया जाता है 123456789। तो बस यही बताने आई हूँ आज आपको कि किस तरह से आपको स्मार्टली अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई पासवर्ड ऐसा रखो जो आपको याद रहे पर किसी और को समझ ना आए, जैसे कि मिक्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, एक काम जरूर कीजिएगा, आज के दिन अपना पासवर्ड चेक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरा पासवर्ड वीक है, तो भाई तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही आपका असली बॉडीगार्ड होता है। सो माय डियर लिसनर, अपने बॉडीगार्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइब को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडी लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जब बात ट्रेवल की आती है ना, तो हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ट्रेवल एक्साइटमेंट में प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर बात की जाए ना ट्रेवल टाइम की, तो आजकल ना एक ट्रेंड बन गया, एंड ट्रेंड क्या है, एयरपोर्ट जाते समय चेक इन या फिर फ्लाइट के टाइम बोर्डिंग पास की फोटो हम लोग जरूर शेयर करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो चले कहीं घूमने। लेकिन पता एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आदत आपकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं रिस्क की, कि किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए बोर्डिंग पास की, तो आपने देखा होगा बोर्डिंग पास के ऊपर एक बारकोड या फिर QR कोड होता है, उसमें हिडन होती है आपके इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, PNR नंबर, फ्लाइट डिटेल्स, सीट नंबर, इवन फ्रीक्वेंट फ्लायर इन्फो। तो देखा कितना डेंजरस है। तो एक बार जरूर सोचेगा कि जब कोड आप ऐसे ओपनली शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने स्कैन कर लिया तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी ट्रेवल डिटेल ट्रैक की जा सकती है, और इतना ही नहीं पर्सनल डेटा मिसयूज हो सकता है, साथ ही आपका अकाउंट एक्सेस या फिर फ्रॉड का रिस्क बढ़ सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, बी स्मार्ट, बोर्डिंग पास की फोटो कभी शेयर ना करें, अगर शेयर करना ही है तो बारकोड ब्लर करें। जी वैसे भी आजकल ना एस्थेटिक का जमाना है, तो हम सारी चीजें ब्लर ब्लर रखते हैं, एंड साथ ही अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड जरूर करें, सभी भी आप किसी भी तरह का कोई पोस्ट करते हैं। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखें, सेफ ट्रेवल करें, स्मार्ट रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। रेडियो महारानी पर आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पल्लवी सिन्हा जी का। इसी के साथ आज वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं कमलेश सचदेवा जी एंड रोटेरियन कुलवीर सचदेवा जी। आप दोनों को आपकी शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाइयां। आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही एंजॉय कीजिए। खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

बात अगर एआई की जाए ना तो हर फील्ड में नजर आ रहा है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अब इंडियन रेलवेज का एआई सेफ्टी अपग्रेड भी आ गया है भाई सामने, यानी कि अब जो हमारे रेलवे ट्रैक्स की सिक्योरिटी है उन पर भी एआई नजर रखेगा। और इंडियन रेलवे अब सेफ्टी को और स्मार्ट बनाने के लिए एआई पावर ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रही है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं आखिर ये सिस्टम काम कैसे करेगा। इस सिस्टम के अंदर एआई एनेबल इंस्पेक्शन व्हीकल्स यूज होंगे एंड इतना ही नहीं ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से ट्रैक के नीचे की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होंगी, यानी कि हिडन फॉल्ट्स का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो पाएगा एआई के थ्रू। और रेलवेज ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टाइमली मेंटेनेंस हो सकेगी, एक्सीडेंट रिस्क कम होगा, साथ ही ब्रिज और क्रॉसिंग जैसे सेंसिटिव एरियाज पर बेटर मॉनिटरिंग हो सकेगी। सो अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए भी गेम चेंजर बन रही है। इंडियन रेलवेज का ये स्मार्ट स्टेप फ्यूचर ट्रेवल को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, अगर बात टेक्नोलॉजी की जाए ना तो टेक्नोलॉजी हर जगह है, लेकिन अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह, एंड अगर आप इसका मिसयूज करते हो ना तो आपको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ सकता है। सो चूज वाइजली और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: मीरा महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
5: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

ये गर्मी तो भाई आपकी गर्मी को भगाने के लिए ना मैं लेकर आई हूँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आई नो अब आप ही बोल रहे हो कि अंशली तुम तो हमेशा फिटनेस वाले फंडे लेकर आती हो, लेकिन आज ये आइसक्रीम कैसे लेकर आ गई? तो भाई इसमें भी अपना ही मजा है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आज अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल तो मैं आज एक ऐसी स्टडी लेकर आई हूँ जहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी अगर आप आइसक्रीम खाते हो ना तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हो सकते एक प्रोटेक्टिव। बिल्कुल भाई, क्योंकि जिंदगी में से अगर मिठास हटा दी जाए, लेकिन अभी स्टडी ने भी प्रूव कर दिया है कि आप कभी कभी आइसक्रीम खा सकते हो। अब जब बात कर रहे हैं स्टडी की, तो सबसे पहले इसकी रियलिटी चेक को जान लेते हैं। कहा जाता है कि जो ये डेयरी फैट्स है उतने विलन नहीं होते जितना हम इन्हें मानते हैं। यानी कि अगर आप आइसक्रीम एक मॉडरेट अमाउंट में खाते हो, एक क्वांटिटी में खाते हो ना कभी कभी, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, एक्सेस अमाउंट में मत खाइएगा क्योंकि इससे हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। सो भाई यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी की है वो है बैलेंस। अगर आप बैलेंस में खाएंगे ना तो आप एंजॉय कर सकते हो गर्मियों ठंडी ठंडी आइसक्रीम। यानी कि सिंपल सा बैलेंस आपको ये बनाना है कि आप अगर एक स्कूप आइसक्रीम खाते हो तो आपकी चेहरे पर स्माइल लेकर आएगी, और वहीं अगर आप डेली टब खाते हो ना तो ये जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही गिल्ट फ्री होकर आइसक्रीम एंजॉय कीजिए, लेकिन भाई से अपना लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर मत बनाइएगा। सो एंजॉय कीजिए इस गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम को। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारे ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो मारा 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यार दोस्तों, बात करते हैं मौसम के बारे में, जहां 10:08 इस वक्त हो रहे और शहर का 33 डिग्री यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। एक्यू की बात की जाए तो एक्यू आज जरूर कम होते नजर आए, 18 न्यूमेरिक पर एक्यू पहुंचते नजर आए। वहीं बात की जाए पूरे दिन की तो आज बारिश का ही ऐसा माहौल रहने वाला है, बारिश आएगी आज कल परसों तक। यहाँ आपको एक बात और बता दूं, अगर कल और परसों की बात की तो पारा और नीचे गिरते नजर आएगा, जहाँ आज मैक्सिमम 34 है तो कल मैक्सिमम 28 तक पहुँचता जरूर नजर आने वाला है। संडे तक वीक ऐसे ही रहेगा पूरा मौसम, बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। और अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, नई दिल्ली से धौलपुर वाली शटल अब स्थायी रूप से चलना शुरू होने वाली है। रेलवे ने नई दिल्ली से धौलपुर के बीच संचालित होने वाली EMU ट्रेन यानी कि 64073 और 64074 को स्थायी रूप से चलाने का सोचा। साथ ही ट्रेन के संचालन में भी बदलाव किया गया उसके टाइमिंग में। रेलवे इस फैसले से फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा और धौलपुर के हजारों यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कहा जा रहा है कि टाइम 64074 का नई दिल्ली से डेली सुबह 4:15 होगा। वहीं यह ट्रेन सुबह 4:46 पर फरीदाबाद और 5:39 पर पलवल और 6:35 पर कोसी कलां पहुंचेगी। यहां से आगे विस्तार के बाद ट्रेन 7:30 छाता और 7:41 पर अजही और 7:52 पर वृंदावन पर होगी। यहाँ बात की जाए तो बस ऐसे ही 64073 धौलपुर से डेली सुबह 4:00 से रवाना होगी और आगरा मथुरा जंक्शन वृंदावन होते हुए 10:20 पर दिल्ली पहुंचती नजर आएगी। तो ये ट्रेन चलने से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है, डेली आने जाने रेगुलर रूटीन ट्रैवल करने वाले पर्सन को।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते जा सके, आप सब जानते हैं फरीदाबाद की काफी मार्केट्स में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना जो बनाई गई थी काफी अरसे पहले। और इन सबसे बात करें कि 24 जनवरी 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल माध्यम से ओल्ड फरीदाबाद की मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल से भी ज्यादा। इसका उद्घाटन होने के बाद से भी सिर्फ शोपीस बनकर के रह गई ये मल्टी लेवल पार्किंग। तो शहरवासियों का यही कहना है कि सुनो सरकार, हमारी भी सुनो। आपने बात तो सुनी, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई भी, लेकिन सिर्फ मात्र को शोपीस बना करके क्यों रख दिया? कब से हम लोग मार्केट्स में इजीली पार्किंग कर सकेंगे ताकि मार्केट में ट्रैफिक भी ना हो और इजीली शॉपिंग भी की जा सके? ये सवाल हम शहरवासियों का है, जो शहरवासी बिल्कुल पूछना चाहते हैं और बॉस पूछना बनता भी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

ही गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी टॉनिक आरजे मोनिक लेकर के आ गया हूँ। बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी बातें सिनेमा के गलियारे से, कुछ सिनेमा के पिचारे से, जहां आपको बताऊंगा कि आने वाला वीकेंड में कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कुछ कहोगा आकाश सिल्वर स्क्रीन पर, तो कुछ होंगी OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम। नई जोड़ियां तो कहीं होने वाला है डायरेक्टोरियल डेब्यू, ट्रेलर टीजर तो कहीं होगा पंजाबी गानों का धमाल। जहां आप सब जानते हैं इस वक्त सतेंद्र पाजी का नया गाना लाड़ा ट्रेंड करता नजर आ रहा है, ना कि सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट पर बल्कि सोशल मीडिया की रील्स पर भी। वहीं साउथ इंडस्ट्री से लेकर के हॉलीवुड तक के बताऊंगा किससे कहानियां, कहीं होगा एक्शन और सस्पेंस का डोज, तो कहीं होगा कॉमेडी और रोमांस का धमाल। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले, सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्में ही फिल्म। यहाँ दोस्तों बात करते हैं अब सिनेमा के गलियारे से विशाल भारद्वाज के बारे में, जहाँ विशाल भारद्वाज को ऑस्कर्स वोटिंग पैनल के लिए इनवाइट किया गया और इंडिया से टोटल 6 फिल्म प्रोफेशनल्स इस लिस्ट में शामिल है। ये इनवाइट एकेडमी ने मोशन पिक्चर्स आर्ट्स और साइंस की 539 मेंबर न्यू इनिशिएट का हिस्सा, जहाँ विशाल के अलावा इस टाइम इंडस्ट्री में छा रही अवनीत कौर स्पेशली सोशल मीडिया पर छाने वाली इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। और यहाँ बात करें इस मेंबरशिप के साथ इस प्रोफेशनल्स को फ्यूचर ऑस्कर्स के लिए वोट करने का राइट भी मिलता, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया से हमारे 2 नाम के अलावा बाकी और 4 की अगर मैं बात करूं, दीपा भाटिया, ए श्रीकर प्रसाद, एक लखानी, दिलीप शंकर जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ऑस्कर्स में भी अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी वोटिंग भी जरूर बनती है। बस बाकी चर्चा करूँ सवाल कॉन्ट्रैक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: आगे गराज, गराज के ये मकैनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्म फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं रजनीकांत साहब की एक बढ़िया कहानी की फ्रेंचाइज यानी कि सीक्वल के बारे में। जेलर 2 बन रही है, आप सब जानते हैं। और इस कहानी में जब से पता लगा है कि ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिलने वाला है, जहाँ इसका कैमियो शूट भी हो चुका है 2 दिन के बेहतरीन स्केड्यूल के साथ, कहा जाएगा ऋतिक रोशन ने यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट पर इनका कैमियो सबके सामने आएगा। जहाँ ऋतिक एक नेवर सीन बिफोर लुक डिजाइन किया गया, एक ऐसा लुक उनका सामने आने वाला है कि आप सोचेंगे बॉस ये कैमियो में तो नहीं सिमटता, इसको तो फुल फ्लेज कैरेक्टर भी डिजाइन किया जाता तो बेहतरीन था। फैंस अब देखिए बहुत ज्यादा निगाह लगाए बैठे हैं कि यार जेरा कहानी बेहतरीन थी, रजनीकांत साहब का किरदार बढ़िया होने वाला है, सीक्वल में और भी बहुत सी चीजें हमें दिखने वाली हैं, लेकिन ऋतिक रोशन का कैमियो इस कहानी में और ज्यादा जान डालते नजर आ रहा है। रजनीकांत का भगवान दादा यानी कि 1986 के बाद पहला ऑन स्क्रीन यूनियन होने वाला है ऋतिक रोशन के साथ, जिसके लिए और ज्यादा उत्सुकता है कि यार बेशक कैमियो के लिए ही सही, लेकिन ऑन स्क्रीन का जो रीयूनियन होगा वो धमाल मचाते तो जरूर नजर आएगा। और बात करें ऋतिक रोशन की, हाल फिलहाल क्रिश की अगली सीरीज के लिए भी चर्चाओं में बने हुए हैं, जिसकी शूटिंग चल रही है, जिसके लगभग 2.5 साल से यही चर्चा है कि इस पर काम चल रहा है। बस ऋतिक ने यही बात कही ऋतिक और कि इस कहानी में वक्त सिर्फ इसी वजह से लग रहा है कि जहाँ पे इस कहानी को सिर्फ महज एक कहानी नहीं, हम इसकी प्लॉटिंग के साथ साथ बैकड्रॉप्स को भी इतना बढ़िया बनाना चाहते हैं, विजुअल्स को इतना बढ़िया बनाना चाहते हैं कि इस कहानी को आप भूले ना, ये ना कहें कि ये एक सीक्वल था या फिर कहानी की अगली सीरीज थी, बस ये सीरीज खुद में एक अलग ही नाम दर्ज कर जाए आपके दिलों में। रहेगा इंतजार इसकी रिलीजिंग का भी, बाकी ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी। उससे पहले का ट्रैक

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो, अरे पूरा सुन के जाओ, सुन के जाओ।
2: Yo boys, I am singing song.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ, यानी कि फिल्मी चॉनिक आज मॉनिक लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। अच्छा दोस्तों, यहाँ बात करते हैं हम अब इंडस्ट्री की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे देख करके बहुत कुछ हमने सीखा भी तो बहुत हंसे भी, हंसाया रुलाया, लेकिन जो सिखाया वो बॉस अगर हर कोई अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल कर ले तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। वो कहते थे ना रेंचो बाबा कि यार जहां पर भी आपको इंटरेस्ट आए वहां जाइए, वहां सीखिए। जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए आपको यूनिफॉर्म की जरूरत है, सीखने के लिए एक जज्बे की जरूरत है, और वो जज्बा है तो आप कहीं से भी किसी से भी जरूर सीख सकते हैं। हमारे थ्री इडियट्स की तिगड़ी राजकुमार हिरानी साहब का कहना है कि अब ये इसका सीक्वल स्क्रिप्टिंग स्टेज पर आ चुका है, जहां पर रेंचो, फरहान और राजू को ओरिजिनल फिल्म के 15-20 साल बाद को फॉलो करती नजर आएगी ये कहानी, जहां अब वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होंगे। अब देखना ही है कि कहानी के एंड में जहां पर अब ये दो लविंग बर्ड्स एक होते नजर आए थे, क्या अब इनकी आफ्टर मैरिज लाइफ को दिखाया जाने वाला है या क्या होगा। इसी कहानी के सीक्वल पे अब चर्चाएं चल रही हैं काफी लंबे अरसे से। हालांकि बीच में राजकुमार हिरानी साहब ने कहा था कि अभी इसकी सीक्वल लाने पर कोई भी सोच विचार नहीं है, लेकिन लेटेस्ट चर्चा ये कि हिरानी साहब कह रहे हैं अब इनको स्क्रिप्टिंग स्टेज पर उतार दिया गया है, और इस बार आमिर आर माधव, शर्मन जोशी और करीना कपूर के वापस आने की एक्सपेक्टेशन। हिरानी ने फोर्थ एडियट्स वाली बात को डिसमिस कर दिया और कहा कि ये कहानी थ्री एडियट्स की थी और थ्री एडियट्स की ही रहने वाली है। अब देखना ही होगा कि स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कब इसको शूटिंग स्टेज पर लाया जाने वाला रहेगा इंतजार, जहां थ्री एडियट्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, चाहे कोई मिडिल एज पर्सन है चाहे कोई सीनियर एज पर्सन, हर किसी ने इस कहानी को देखा और खूब ठहाके लगाए। अब अगली कहानी क्या धमाल मचाएगी इसका रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा

गाना है डांस का भूत चढ़िया इन द वॉइस अरिजीत सिंह। यह बात करते हैं इंडस्ट्री के अब ऐसे स्टार के बारे में जिनको ज्यादातर आपने कुछ ऐसे सीरियस किरदारों में देखा है, कभी फाइट करते हुए तो कभी गोलियों की बौछार करते हुए। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो कभी कभार गरम मसाला की तरह कामजी फैलाते हुए भी देखा है। गरम मसाला में एक अलग ही पहचान बनाने वाले जॉन इब्राहिम की अगर बात की जाए तो अब एक नए किरदार में सबके सामने आने वाले जहां उनका AI जनरेटेड फर्स्ट लुक भी सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है, जहां पोस्ट में लिखा गया कि न्यू वाटर्स न्यू विंड्स न्यू हॉरिजन्स, लेकिन प्रोजेक्ट का टाइटल कास्ट ऑफ फॉर्मेट अभी रिवील नहीं हुआ। फैंस वही अंदाजा लगा रहे हैं कि फर्स्ट लुक देखकर कि बॉस यहाँ पर इनका किरदार सीरियस और एक्शन से भरपूर तो होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या इसके आगे अभी क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मिक्स रिस्पॉन्स ज्यादा नजर आया, जहां यूजर्स ने AI विजुअल्स की क्वालिटी पर क्रिटिसिज्म भी किया और साथ ही साथ चर्चाएं एक और किस्म की होती नजर आई। अभी तक ये क्लियर नहीं कि ये टीजर फिल्म के लिए था या वेब सीरीज के लिए या किसी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन बात की जाए तो जॉन इब्राहिम यहाँ पे फोर्स 3 पर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां पे यशवर्धन सिंह के रूप में लौटने वाले हैं और हर्षवर्धन राणे फ्रेंचाइज में एंट्री ले सकते हैं। हर्षवर्धन राणे की अगर बात की जाए तो बॉस इनका जो कमबैक हुआ है ना विदाउट एनी न्यू रिलीज, हर्षवर्धन राणे का कमबैक तो कोई नहीं भूल सकता। रोमांटिक लव स्टोरी सालों पहले रिलीज हुई और एक बार फिर से जब उसको रिलीज किया गया तो हर्षवर्धन राणे की उस एक्टिंग को उनके अंदर छुपे उस किरदार को देख करके बहुत फैंस उत्सुक हुए और पहले से ज्यादा कमाई करने के बाद से ही राणे साहब को नई कहानी के ऑफर्स भी मिले और अब यहाँ फोर्स 3 में जॉन इब्राहिम के साथ काम करते नजर आने वाले हैं हमको। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रही, उस पर एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी और ये गाना फ्रॉम द मूवी सात खून माफ।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं थलाइवा के बारे में, जहां रजनीकांत साहब की हमने एक कहानी की बात तो कही, लेकिन यहां पर इनकी एक और कहानी का फर्स्ट लुक को बनाने का बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी शेयर होता नजर आया। कहानी का नाम है धर्मन जहां इस वीडियो में उनका स्टाइल प्रेप और एसेसरी सिलेक्शन और डायरेक्टर अश्वत के साथ पोस्ट फाइनलाइज करते हुए दिखाया गया है। मेकिंग वीडियो में रजनीकांत के ग्लास, रिंग, वॉच और चेन जैसी एसेसरीज को शॉर्टलिस्ट करते हुए देखा गया। वीडियो में कमल हसन भी रजनीकांत के साथ नजर आए और दोनों वेटरन स्टार्स एक दूसरे से बात करते हुए दिखे। अब चर्चा ये क्या चल रही है फैंस इसी के बारे में सोचो कि बॉस लगता है ये ग्लासेस तेरे ऊपर अच्छे लगने वाले हैं और चेन मेरे ऊपर। लेकिन नहीं, असल कहानी तो कुछ और ही होगी कि यार शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है, अब देखते हैं लोग किसका ज्यादा वायरल होता नजर आएगा। बताइए आप, कमल हसन साहब या फिर थलाइवा यानी कि रजनीकांत। धर्मन को रजनीकांत की 176 फिल्म के रूप में लॉन्च किया गया है और ये अश्वत डायरेक्ट करते नजर आएंगे। देखते कहानी क्या धमाल मचाने वाली है। हालांकि अभी बहुत लंबा अरसा इसकी रिलीजिंग को लेकर, बाकी ऐसी अभी चर्चाएं चलती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: फिर आ गए सब।

अरे बात सुनिए रे, तू पीआर है, इस खातिर तेरा तक करे प्यार को न्या, और सारी दुनिया में जागी टोली है, तने जाट वर्गा मिलेगा यार को न्या। और मैडम है, दिन में शिफ्टा रात ने स्टूडियो में गावे, मैंने तेरा जैसा देखा स्टार को न्या, तेरा जैसा देखा स्टार को न्या।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
7: आवारा हूँ, आवारा.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं, अब जहाँ वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का, तो आज सिनेमा के कैलेंडर में बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही रूह को सुकून मिलता है। बॉलीवुड में कई सिंगर्स आए और कई गए, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती बल्कि एहसास जगा देती है। सूफी म्यूजिक को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड तक पहुंचाने वाले सिंगर ने अपनी अलग पहचान बनाई। बात करूंगा आज एक ऐसे सोलफुल सिंगर, कंपोजर और परफॉर्मर के बारे में जिनके गाने सिर्फ एक दौर तक ही सीमित नहीं थे, आज भी इनके गानों को सुनने का एक अलग ही ट्रेंड। आज भी अगर कहीं पता लग जाए कि यार एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है सिंगर का, तो भीड़ जुट जाती है, ना कि सिर्फ एक टाइम जोन एज गैप लोगों की, बल्कि अगर बात की जाए सिर्फ एक एज लिमिटेड नहीं है इनके फैन फॉलोइंग की, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल, इनके गाने सुनना हर कोई पसंद करता है क्योंकि इनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है। जादू का एक ऐसा एहसास है जो अपनी आवाज़ से दूसरों के दिलों तक वो एहसास पहुँचा जाती है इनकी आवाज़। कौन है वो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू

के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्म फ्लेवर। और आज सिनेमा के कैलेंडर में मैं बात कर रहा हूँ द कैलासा की। जी हाँ, द कैलासा के नाम से फेमस कैलाश खेर के बारे में, जो कि आज अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैलाश खेर के सफर की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। यूपी के मेरठ से मुंबई तक का उनका सफर आसान नहीं था। करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन म्यूजिक के लिए उनका जुनून कभी भी कम नहीं हुआ। उनकी अलग और अल्टी वॉइस ने म्यूजिक डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा और धीरे धीरे वो बॉलीवुड का सबसे अलग पहचान वाले सिंगर्स में शामिल हो गए। आज उनकी आवाज सुनते ही बिना नाम बताए लोग पहचान लेते हैं। कैलाश खेर ने कई यादगार गाने दिए जो आज भी हर जनरेशन के प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। तेरी दीवानी तो एक ऐसा गाना बनकर के रह गया कि आज भी लाइव कॉन्सर्ट्स में अगर कैलाश खेर आ जाए, यानी कि द कैलासा की एंट्री हो और तेरी दीवानी की डिमांड फैंस की तरफ से ना आए या फिर कैलाश खेर खुद ना गाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो खुद कहते हैं कि कैलासा एक बैंड जो हर जगह परफॉर्म करते आपको नजर आता है और आप लोगों का प्यार है, लेकिन इसमें तेरी दीवानी की अगर बात की जाए, कहते अब तो इतनी आदत लग गई है कि बॉस कॉन्सर्ट खत्म ही तेरी दीवानी के बाद होगा, क्योंकि हर जगह फैंस इसकी डिमांड तो जरूर करते हैं। साथ ही सैया गाना और अर्जियां इनका बहुत फेमस रहा। उनके गाने हिट नहीं हुए बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल कॉनेक्ट की वजह से लोगों के दिलों में बस गए। उन्होंने अपने बाद एक ऐसी छाप छोड़ जाते लाइव कॉन्सर्ट्स में कि कैलाशा के साथ भी दुनिया भर में लाइव परफॉर्मेंस देकर इंडियन सूफी म्यूजिक को ग्लोबल पहचान देते नजर आए। इनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा और कुछ खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

गाना फ्रॉम द मूवी ब्रह्मचारी और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। जहाँ सिनेमा के कैलेंडर में हम बात करें कैलाश खेर के बारे में, जहाँ इनकी म्यूजिकल जनरी की अगर बात की जाए तो इसमें म्यूजिक के लिए बड़े अवार्ड्स भी इन्हें मिल चुके हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ी पहचान उनकी ओरिजिनल आवाज और सूफी स्टाइल बना, जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अब तक तो नहीं निकल पाया। चाहे भक्ति गीत हो, सूफी म्यूजिक या बॉलीवुड सॉन्ग, उनके सिंगिंग हर जनर में अलग ही असर छोड़ देती है। आज भी जब दिल को सुकून देने वाली आवाज की बात हो तो कैलाश खेर का नाम सबसे पहले याद आता है, और नाम के साथ साथ उनके गाने भी याद आ जाते हैं, क्योंकि उनके गाने कल्ट क्लासिक बन करके रह गए। आप बताइए, आपको कैलाश खेर का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब लगता है, जो आपको इतना पसंद है कि जब चाहें सुन लेगी भैया, हर मूड में ये गाना सुनेंगे तो मूड बेहतर हो ही जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर जरूर व्हाट्सएप करके बताइए आपको इनका गाना कौन सा पसंद आया और आज भी आपके दिल में जगह बनाए बैठा। कल उस नाम के साथ शुरुआत होगी, और अब यहाँ से वक्त हो चला जाने का, फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइम सेम जगह, करूँगा बहुत ही चर्चा। तब तक के लिए अलविदा, और ये खूबसूरत सा एक और बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए ओनली ऑन रेडियो महारानी।

मुराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमराया मारे गिल गुमराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

सोचिए, सिर्फ 4 साल का एक छोटा सा बच्चा स्टेज पर खड़ा है, हाथ में माइक, सामने हजारों लोग, और वो गाना शुरू करता है, क्या हुआ तेरा वादा। लोग हैरान रह जाते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जिस बच्चे की बात मैं कर रहा था वो बच्चा था सोनू निगम। साल 1973, जुलाई 30 तारीख, फरीदाबाद हरियाणा। घर में म्यूजिक का माहौल था। उनके फादर अगम कुमार निगम खुद एक सिंगर थे। सोनू बचपन से ही अपने फादर के साथ शादियों और स्टेज शोज में गाने जाते थे। जब बच्चे क्रिकेट या गिल्ली डंडा खेलते थे, सोनू स्टेज पर सुरों से खेलते थे। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को अपना आइडल माना। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी आवाज में रफी साहब की झलक सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे ये बच्चा बड़ा होके स्टार बनेगा, पर सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं। टीनेज में ही सोनू और उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। सपना था प्लेबैक सिंगर बनना, लेकिन मुंबई सपनों का शहर कम, स्ट्रगल का शहर ज्यादा होता है। स्टूडियो के चक्कर, म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार, कभी ऑडिशन मिलता कभी सीधा मना। एक वक्त ऐसा भी आया जब काम नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी शुरू हो गया था, लेकिन सोनू ने एक बात नहीं छोड़ी और वो थी रियाज, यानी कि प्रैक्टिस। रोज सुबह उठकर सुरों की प्रैक्टिस, क्लासिकल ट्रेनिंग ली उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से। उन्होंने अपनी आवाज को सिर्फ अच्छा नहीं, परफेक्ट बनाने का टारगेट रखा। उन्हें पता था टैलेंट से दरवाजा खुलता है, पर मेहनत से करियर बनता है। और फिर एक मौका आया, और कौन सा था वो मौका, करेंगे इसके बारे में बात। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

साल 1995, जी टीवी पर एक म्यूजिक शो शुरू हुआ, सारेगामा। होस्ट कौन बना? एक यंग एनर्जेटिक सिंगर, सोनू निगम। ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सोनू निगम की। और ये सारेगामा का जो शो था, ये सोनू निगम के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी आवाज में वार्म्थ थी, बात करने का अंदाज दिल से था, और जब कभी शो में गाते थे वो, तो लोग टीवी के सामने रुक जाते। इंडिया ने उन्हें पहचानना शुरू किया, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1997 फिल्म बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं, जब ये गाना रिलीज हुआ पूरा देश रो पड़ा। फौजियों की जुदाई, माँ का इंतजार, देशभक्ति की भावना, सोनू की आवाज ने इस गाने को सिर्फ सॉन्ग नहीं इमोशन बना दिया। उसके बाद तो जैसे हिट की लाइन लग गई, ये दिल दीवाना, कल हो ना हो, सूरज हुआ मध्यम, अभी मुझ में कहीं, और हर मूड के लिए सोनू निगम रोमांटिक, बिल्कुल राइट, सैड भी, हाई पिच भी, और क्लासिकल टच भी। उन्हें लोग कहने लगे मॉडर्न मोहम्मद रफी, पर सक्सेस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सी भी। तो स्टारडम के साथ कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज ने उन्हें घेरा, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

आमद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

2000s के दौरान सोनू निगम बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक बन चुके थे। अवार्ड्स, कॉन्सर्ट्स, वर्ल्ड टूर, सिर्फ उनका नाम ही काफी था। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की। सोनू निगम कभी सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट एल्बम्स निकाले, दीवाना जो आज भी एवरग्रीन है। उन्होंने कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, कई लैंग्वेजेस में गाने गाए। साउथ इंडिया में भी उनका क्रेज बॉलीवुड से कम नहीं है। लेकिन 2017 में एक ट्वीट कंट्रोवर्सी ने उन्हें हेडलाइंस में ला दिया। उन्होंने लाउडस्पीकर्स के इशू पर अपनी राय रखी और सोशल मीडिया पर बहुत डिबेट शुरू हो गई। क्रिटिसिज्म हुआ, सपोर्ट भी मिला, पर एक बात क्लियर थी, सोनू निगम अपनी बात कहने से डरते नहीं। उन्होंने कभी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के सामने झुकना पसंद नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सिंगर हूं, किसी का गुलाम नहीं। और ये लाइन उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। और कैसे एक आवाज जो सिर्फ गाती नहीं रूह को छू लेती है, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

सोनू निगम की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? उनकी वर्सिटैलिटी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। सोनू निगम हाई पिच में ये दिल दीवाना ऐसे गाने गाते हैं और फिर अभी मुझ में कहीं जैसे सोलफुल मास्टरपीस भी। उनकी आवाज में दर्द भी है और दुआ भी है। उन्होंने रियलिटी शोज में जज बनकर नए टैलेंट को गाइड किया, हर कंटेस्टेंट को सिर्फ जज नहीं मेंटोर की तरह ट्रीट किया। स्टेज शोज में उनका लाइव सिंगिंग लेवल स्टूडियो से भी बेटर माना जाता है। ऑटो ट्यून के जमाने में भी सोनू निगम लाइव सुर पकड़ते हैं बिना किसी सपोर्ट के, ये ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्होंने कभी सिर्फ फेम के लिए गाना नहीं गाया, वो हर गाने को फील करते हैं, इसीलिए जब वो गाते हैं तो लगता है जैसे कहानी सुना रहे हैं। और कैसे सोनू निगम बने एक लेजेंड, करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

आज सोनू निगम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक लेगेसी है। 3 डिकेड से ज्यादा का करियर, हजारों गाने, नेशनल अवार्ड्स, फिल्मफेयर अवार्ड्स। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सोनू निगम की। इतने सारे नेशनल अवार्ड्स और फिल्मफेयर अवार्ड्स के बावजूद आप अगर उनसे कभी भी मिलो तो वो वही सिंपल इंसान मिलेंगे जो 4 साल की उम्र में स्टेज पर खड़ा था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। स्ट्रगल से लेकर सुपरस्टारडम तक ये जो सफर था ना, हमें ये सिखाता है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेशेंस। और शायद इसीलिए आज जब भी कोई इमोशनल मोमेंट आता है, बैकग्राउंड में सोनू निगम की आवाज चलती जरूर है, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और वही आवाज है सोनू निगम की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 से मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सभी के लिए ये गाना।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हे हाय, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आ गई हूँ शो बिजनेस अनप्लग्ड। हाँ, वही शो जिसमें हम आपको ले जाते हैं उन लोगों की दुनिया में जिन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया बल्कि हिस्ट्री भी बनाई। मैं हूँ गीत। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, और ट्रस्ट मी, ये कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी माइंड ब्लोइंग भी। वो स्टोरी जिसे सुनकर आपको लगेगा वाह, ये सच में हुआ था। इमेजिन करो, एक छोटी सी शुरुआत, कुछ आइडियाज, कुछ प्लान्स और बहुत सारा हसल, स्लीपलेस नाइट, फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वही छोटी शुरुआत बन जाती है कुछ ऐसी चीज जिसे देखकर पूरा वर्ल्ड कहे ये पॉसिबल कैसे हुआ। और ये स्टोरी सिर्फ सक्सेस की ही नहीं और सिर्फ स्ट्रगल की ही नहीं, यहाँ है विजन, डेडिकेशन, पैशन और वो काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग जो आप सिर्फ लेजेंड्स में ही देखते हैं। थिंक अबाउट इट, नंबर्स, रिएक्ट, इम्पैक्ट और वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो दुनिया में किसी ने क्रिएट किया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, शुरुआत इतनी हम्बल थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लेवल कहाँ तक जाएगा। और आप सोचो क्या होता है उस इंसान के साथ जिसने सब कुछ शुरू किया बस एक आइडिया से और फिर स्लोली होल वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच गया। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आज अनप्लग करने वाली हूँ कुछ सीक्रेट्स, हाई एंड लोज और वो सारे मोमेंट जो आपको रोक कर रख देंगे। ये कहानी है हसल की, विजन की और उस डेडिकेशन की जिसे सुनकर आपको लगेगा ये रियल में कोई कर सकता है। तो लिसनर्स, आर यू रेडी, क्योंकि आगे होने वाला है बहुत कुछ और ट्रस्ट मी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

एंड वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आज बात करने वाली हूँ उस इंसान की जिसने अपने विजन, डेडिकेशन और पैशन से इंडिया में टेक की दुनिया को रिडिफाइन किया. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिव नादर की. शिव नादर जो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े विजनियर्स और फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक है, जिन्होंने 1976 में HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की शुरुआत की बस अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटे से गैराज में. उस टाइम इंडिया में कोई भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर नहीं रहा था और वही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बन गई इंडिया के टेक रेवोल्यूशन की पहचान. अब कंपनीज की बात करें, HCL जो आज ग्लोबल टेक जायंट बन चुका है, सिर्फ सॉफ्टवेयर या IT सर्विस नहीं करता बल्कि IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, कंसल्टिंग और इमर्जिंग टेक प्रोजेक्ट्स में भी काम करता है. HCL का टर्नओवर आज $12.8 बिलियन के आसपास है और 60 देशों में फैली हुई कंपनीज में 225,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. लेकिन शिव नादर सिर्फ HCL के लिए नहीं जाने जाते, इनके पास है मल्टीपल वेंचर्स, टेक इनिशिएटिव्स जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं और साथ ही इनका फिलैंथ्रोपिक वर्क भी इक्वली बड़ा है. शिव नादर फाउंडेशन ने अब तक सीधे 36,000 बच्चों की जिंदगी बदली है और इस फाउंडेशन में इन्होंने $1.1 बिलियन का एंडोमेंट दिया है. सो इमेजिन करो, एक आदमी जो छोटे से शहर से आया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गैराज में कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता रहा और आज इनके पास है वर्ल्ड क्लास टेक एम्पायर, ग्लोबल रीच और समाज के लिए करोड़ों की फिलैंथ्रोपी. लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स और कंपनीज की नहीं है, ये कहानी है विजन, स्ट्रगल, स्मार्ट डिसीजन और रिलेंटलेस डेडिकेशन की. शिव नादर ने साबित किया कि स्मॉल बिगनिंग भी ग्लोबल इम्पैक्ट में बदल सकती है बशर्ते आपके पास पेशेंस और विजन हो. तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं डाइव करने वाली हूँ इनके अर्ली स्ट्रगल्स, गैराज डेज और वो स्ट्रेटेजी जो इन्हें इंडिया के टॉप लीडर्स में से एक बनाती है. और ट्रस्ट में, ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि रियल हसल क्या होता है. वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड. और जिन लोगों ने अभी सुनना मुझे शुरू किया है, मैं बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिव नादर के बारे में. और अब मैं जाने वाली हूँ उस पार्ट में जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग था, शिव नादर के अर्ली डेज और चाइल्डहुड. तो पिक्चर करो, साल 1945, तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर. यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम था शिव नादर. बिल्कुल साधारण परिवार में, कोई बड़ा प्रिविलेज नहीं, कोई फैंसी अपब्रिंगिंग नहीं, लेकिन बचपन से ही इनके अंदर क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी का लेवल कुछ अलग था. शिव नादर को मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि थी. स्कूल की किताबें बस पढ़ने की चीज नहीं थी इनके लिए, बल्कि समझने की, एक्सप्लोर करने की जगह थी. ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करते, छोटे छोटे गैजेट्स को खोलते और समझने की कोशिश करते कि ये काम कैसे करता है. शिव नादर ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल से. यहाँ इन्होंने लॉयला कॉलेज, चेन्नई से प्री यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट स्टडी पूरी की. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इनका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने वो अप्लाई भी करना शुरू कर दिया. इमेजिन करो, एक छोटे से शहर का बच्चा, सिंपल बैकग्राउंड और माइंड में आइडियाज, एक्सपेरिमेंट और ड्रीम्स. और यही अर्ली माइंडसेट, वही क्यूरियोसिटी, वही लर्निंग एटीट्यूड ने इन्हें आगे चलकर HCL जैसी कंपनी बनाने में मदद की. लेकिन बात सिर्फ एकेडमिक्स की नहीं थी, शिव नादर में डिसिप्लिन, फोकस और डिटर्मिनेशन भी बचपन से ही था. इनके माता पिता ने इन्हें सिंपल वैल्यूज और हार्ड वर्क का महत्व सिखाया. स्मॉल विक्ट्रीज और स्मॉल एक्सपेरिमेंट ने धीरे धीरे इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जो आगे इनके एंटरप्रेन्योर जर्नी में काम आया. तो यही वो अर्ली डेज की कहानी है, क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग और डेडिकेशन. ये वो फाउंडेशन था जिस पर इन्होंने अपने विजन और पैशन को बिल्ड किया और आगे चलकर इंडिया की टेक हिस्ट्री बदल दी. और ट्रस्ट में अभी ये शुरुआत है, हम आगे जाने वाले हैं इनके कॉलेज के डेज, दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट और वो फर्स्ट आइडिया जो धीरे धीरे HCL की शुरुआत बनी. स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है.

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ शिव नादर के बारे में। पिक्चर दिस, एक छोटे से रूम में कुछ पैशनेट लोग बैठे हैं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई कॉर्पोरेट लग्जरी नहीं, बस आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी मेहनत। यही वो प्लेस था जहां शिव नादर और उनके दोस्तों ने शुरू किया HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। 1976 का टाइम था, इंडिया में कंप्यूटर्स बनाना अभी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इम्पोर्टेड मशीन्स और हाई टेक सिस्टम्स के बीच शिव नादर और उनकी टीम ने डिसाइड किया क्यों ना खुद ही टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। और बस यही छोटी सी शुरुआत, वही छोटा गैरेज धीरे धीरे बन गई इंडिया के टेक रेवोल्यूशन की पहचान। सो इन्होंने शुरू किया कैलकुलेटर्स, माइक्रोप्रोसेसर्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना। लो बजट सेटअप, स्लीपलेस नाइट्स, ट्रायल एंड एरर, और बिलीव मी फेलियर्स इतने कॉमन थे कि हर दिन कुछ नया सीखना था। लेकिन शिव नादर का फोकस क्लियर था, विजन। अर्ली चैलेंजेस बहुत सारे, मार्केट में इम्पोर्टेड टेक का डोमिनेंस और क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस हासिल करना। लेकिन शिव नादर ने स्ट्रेटेजी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से सब हैंडल किया। इन्होंने छोटे क्लाइंट से शुरुआत की, ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए और HCL को स्ट्रक्चर कंपनी में कन्वर्ट किया। तो एक स्मॉल गैराज से स्टार्ट हुई कंपनी जो धीरे धीरे इंडिया का पहला इंडिजीनियस कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी बन गई। फर्स्ट प्रोडक्ट, स्मॉल स्केल डिलीवरीज, क्वालिटी चेक्स, हर स्टेप में हसल और डेडिकेशन। और ये हसल सिर्फ टेक तक सीमित नहीं रहा, शिव नादर ने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन सोचा, शॉर्टकट नहीं दिए, क्वालिटी, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को प्रायोरिटी दी। और यही अप्रोच ने HCL को बनाकर ग्लोबल टेक जॉइंट में कन्वर्ट किया। ये वो कहानी, गैराज डेज, एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट प्रोजेक्ट्स और अर्ली हसल जिसने HCL को इंडिया और ग्लोबली नाम दिलाया। स्टे ट्यून क्योंकि अभी आगे है उन डिसीजन और स्ट्रेटेजीज की स्टोरी जिसने शिव नादर को ग्लोबल इम्पैक्ट और लेजेंडरी स्टेटस तक पहुंचाया।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged. हम बात कर रहे हैं शिव नादर के बारे में. वही स्मॉल गैराज, वही एक्सपेरिमेंट्स और वही पैशनेट हसल. धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन. शिव नादर और उनकी टीम के एफर्ट्स ने SCL को ग्रेजुअली इंडिया की टेक इंडस्ट्री में स्टैंड आउट प्लेयर बना दिया. फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, वो कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने वाले मोमेंट्स थे. हर प्रोजेक्ट ने इन्हें थोड़ा बड़ा विजन दिया और स्लोली वो सोचने लगे, क्यों ना सिर्फ इंडिया में सिर्फ कंप्यूटर ही बने बल्कि कंप्लीट टेक इकोसिस्टम डेवलप हो. और तभी शिव नादर ने अडॉप्ट किया कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग का वो लेवल जिसने SCL को स्ट्रक्चर ग्रोथ, प्रोसेस ड्राइवन ऑपरेशंस और ग्लोबल एक्सपेंशन की दिशा में ले जाना शुरू किया. प्रोजेक्ट्स बढ़े, एम्प्लॉयज बढ़े और धीरे धीरे कंपनी का फुटप्रिंट 60 कंट्रीज तक फैल गया. थिंक अबाउट इट, जो शुरुआत थे सिर्फ कैलकुलेटर्स और माइक्रो प्रोसेसर से, वो अब सॉफ्टवेयर सर्विस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और कंसल्टिंग में ग्लोबल लीडर बन चुके थे. टर्नओवर लगभग $12.8 बिलियन, एम्प्लॉयज 2,25,000 प्लस ग्लोबली. बट शिव नादर के लिए सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं थी, इनके विजन में हमेशा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्लस इनोवेशन प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल थी. और इसी वजह से इन्होंने शिव नादर फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एडुकेशन और सोसाइटी को एम्पावर कर रही है. अब तक 36,000 बच्चों की लाइफ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एंडोमेंट उनके पास है. तो दोस्तों, ये जर्नी है फर्स्ट बैग सक्सेस, स्केलिंग स्ट्रेटजीज, ग्लोबल एक्सपेंशन और विजन ड्राइव ग्रोथ की. एक छोटा सा गैराज, स्लीपलेस नाइट, फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट और अब एक ग्लोबल टेक एम्पायर और फिलैंथ्रोपिक लेगेसी. लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई. शिव नादर की स्टोरी हमें सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती बल्कि ये बताती है कि हम्बल बिगिनिंग्स प्लस रिलेंटलेस हसल प्लस विजन मिलकर किसी इंसान को लेजेंडरी बना सकते हैं. तो ये कहानी है एक विजन की, एक सोच की और उस भरोसे की, जो छोटे से आइडिया से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचा. मैं हूं गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग. मैं मिलूंगी आपसे अब कल, जहां ढेर सारी बातें करेंगे एक नए बिजनेस टाइकून के साथ. और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके. कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग.

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: के जानता हक से मैदान मेरा यो यो
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

क्या कभी आपने नोटिस किया है, चेहरे पर सबसे छोटी जगह पर सबसे ज्यादा नजर वही आती है, एक छोटा सा लाल बिंदु, नाक ना होठ, फिर भी सबसे पहले वही दिखता है। वो कहा है कि चेहरे की भीड़ में एक बिंदु अलग सा चमकता है, जैसे खुद को याद दिलाता हो मैं हूँ। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ हम बात करेंगे उस छोटी सी पहचान की जो सदियों से महिलाओं की खूबसूरती का राज रही है, यानी एक बिंदु। आखिर बिंदु का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। बिंदी शब्द आया है संस्कृत के शब्द बिंदु से, जिसका मतलब होता है बूंद, पॉइंट या फिर शुरुआत। हिंदू दर्शन में बिंदु को माना गया है सृष्टि का आरंभ, जहां से सब कुछ निकला। सोचिए चेहरे पर जो सबसे छोटा है, दर्शन में वही सबसे बड़ा है। बिंदी के बारे में ये सारी चीजें जान ही रहे हैं तो वापस आकर जानेंगे आखिर कितनी पुरानी है ये। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज का सफर हमें ले आया है दिल्ली तक। बात करें आखिर कितनी पुरानी है, तो कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्तियों में फोरहेड मार्किंग्स मिले हैं अजंता एलोरा की मूरल्स में। महिलाओं के माथे पर तिलक और बिंदु नजर आते हैं। ये सिर्फ फैशन ट्रेंड नहीं था, ये परंपरा थी। वो कहा है कि समय बदलता गया पर माथा वही रहा और उस पर बिंदी भी। सिर्फ बिंदी का इतिहास ही नहीं, बिंदी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। स्पिरिचुअल एंगल की बात करें थर्ड आई। कहा जाता है बिंदी लगती है दो बोहों के बीच, जिसे कहते हैं अजना चक्र यानी आज्ञा चक्र। ये माना जाता है कॉन्सेंट्रेशन और इंट्यूशन का सेंटर, साथ ही योगिक ट्रेडिशन के हिसाब से यही जगह है जहाँ से सोच और संवेदना मिलती है। इसीलिए पहले के जमाने में चंदन हल्दी कुमकुम लगाया जाता था, सिर्फ श्रृंगार नहीं ऊर्जा संतुलन के लिए। बात कर ही रहे हैं बिंदी की, तो वापस आकर जानेंगे लाल रंग का राज। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बिंदी के बारे में। बिंदी से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने जानी, इसका इतिहास, पूरी कहानी जानी, लेकिन बात करते हैं लाल रंग की। आखिर क्या राज है लाल रंग का? लाल बिंदी सबसे कॉमन क्यों है? क्योंकि लाल रंग माना गया है शक्ति, प्रेम, विवाह, सुरक्षा। शादी के बाद लाल बिंदी सिर्फ मेकअप नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो कहा है कि मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी, दो बिंदु जो जिंदगी का दायरा पूरा करते हैं। फिर आखिर तिलक और बिंदी का फर्क क्या है, इस बारे में भी चलिए बात करते हैं। तिलक अक्सर रिलीजियस सेरेमनी में लगता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप में। बिंदी ज्यादातर महिलाओं का श्रृंगार बनी, गोल्ड डिजाइन वाली, स्टोन वाली। साउथ इंडिया में आज भी छोटी लड़कियों को काली बिंदी लगाई जाती है ताकि नजर से बचाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे ये सफर मुगल से बॉलीवुड तक आ पहुंचा, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बिंदी के बारे में, जान रहे हैं बिंदी का कॉन्सेप्ट। बिंदी से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने जानी, इतिहास जाना, लेकिन धीरे धीरे ये सफर करके बॉलीवुड तक आ गई। वो कहा है कि मुगल से लेकर बॉलीवुड तक का बिंदी ने एक अपना अलग अंदाज तय किया। मुगल एरा में बिंदी ने डेकोरेटिव रूप लिया मोतियों और पत्थरों के साथ। फिर आया 70s to 80s का बॉलीवुड, बड़ी गोल लाल बिंदी का दौर। रेखा जी का लुक हो या हेमा मालिनी का श्रृंगार, बिंदी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। फिर आगे चलकर बात करें 90s में, तो 90s में स्टिकर बिंदी हर मार्केट में मिलने लगी। और आज के समय की बात करें तो रनवे पर ग्लोबल मॉडल्स भी बिंदी के साथ ही वॉक करती हैं। यानी धीरे धीरे बिंदी ने मॉडर्न आइडेंटिटी अपना ली। आज बिंदी पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई रोज लगाता है, कोई कभी कभी। किसी के लिए ट्रेडिशन है, किसी के लिए फैशन है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है, चाहे ऑफिस हो, शादी हो या फेस्टिवल, बिंदी लगाते ही चेहरे की सिमेट्री बदल जाती है। और बात की जाए बिंदी की, तो बिंदी कभी सिर्फ लाल डॉट नहीं थी, ये एक याद है उन हाथों की जो सुबह मेकअप से पहले कुमकुम उठाते हैं। वो कहा है कि बिंदी उतर भी जाए शाम तक, पर पहचान नहीं उतरती। माथा साफ हो सकता है, पर रिवायत नहीं। अगर आप आज बिंदी लगाएं, तो एक पल रुक कर सोचिए, ये सिर्फ श्रृंगार है या सदियों का सफर। इसी के साथ वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे कल कल्चर कारवा की फिर एक नए सफर के साथ, एक नए जायके के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम

मुझे अगर कोई बोले कि गौरव कोई ऐसी चीज बता जिसके लिए तू सब कुछ छोड़ देगा, तो वो है आज का दिन वाला मौसम। क्या मौसम था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे अभी आपसे बात करते हुए। और ऐसा मौसम मैं चाहता हूँ रोजाना बन जाए। देखो बारिश जब आती है बहुत ज्यादा तो दिक्कत होती है, बट वो जो ड्रिजलिंग हो रही थी और वो काले बादल थे कितना अच्छा लग रहा था ना, और अभी भी कई कई जगह पे ये है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आज मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो ये तो मैं देखूंगा। और साथ ही साथ बात करेंगे, जो पहला वाला मैच गया था ना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जो सैटरडे को गया था, मतलब ठीक है मेरे को अच्छा नहीं लगा उस दिन जब टीम इंडिया हारी। आज जो मैच है वो 10 बजे स्टार्ट होएगा, सैटरडे को 7 बजे स्टार्ट हो गया था, और फिर अगला मैच कब होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो ये सब अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, और आज दिन के मौसम को कैसे एंजॉय किया आप लोगों ने बता दीजिएगा। एंड मुझे पता, देखो आप में से काफ़ी सारे लोगों की ना अभी तक सैलरी आ गई होगी। जिनकी सैलरी आ गई है उनके चेहरे पर तो खुशी अलग ही दिखती है, और जिनकी सैलरी नहीं आई है डोंट वरी आ जाएगी आप लोगों की सैलरी। और उसके बाद देखो अच्छे से यूटिलाइज करना उसको। और साथ ही साथ हम लोग आज बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो अभी रिसेंटली आई है, और उसके साथ में बात करेंगे फरीदाबाद के कुछ ऐसे मुद्दों पर जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मंगलवार की शाम गौरव है मेरा नाम, आप सभी के साथ आया हूँ। मोस्ट वांटेड मुंडा पब्लिक बुलाती है मुझे, और आप सभी के लिए गाने भी चलाऊंगा। और इसी बीच अगर फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? नंबर है मेरा एक सिंपल सा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल कॉकटेल मूवी 2 से मैं आप सभी के लिए गाना चला रहा हूं, और गाना काफी अच्छा है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

करण औजला की आवाज में था ये गाना, मिक्स मैशअप था उनके दो गानों का। और अभी जो ये मिक्स्ड इमोशन या फिर मैं बोलूं मिक्स्ड मौसम चल रहा है आसमान में, वो बिल्कुल ऐसा है कि हम लोगों को कभी तो खुश कर दे रहा है कभी नाराज। जैसे कि सुबह इतनी उमस वाली गर्मी थी आज, और फिर उसके बाद दोपहर में दिल खुश कर दिया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आपको पता है जो हमारा इंडियन मेट डिपार्टमेंट है यानी कि जो मौसम विभाग है, उन्होंने अभी रिसेंटली सैटेलाइट इमेजेस कैप्चर करी है और उसमें दिख रहा है दो बड़े बड़े मानसून, मतलब स्ट्रांग हो रहा है बेसिकली मानसून, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मानसून स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है मिड वाले इंडिया वाले एरिया में, एंड वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में भी आसार है कि बारिश तेज हो जाएगी। जैसे कि साल की शुरुआत में अप्रैल में बोला जा रहा था कि इस बार एलनीनो इफेक्ट है, सुपर एलनीनो है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया था, तो लोग कह रहे थे उस टाइम, मौसम विभाग खुद कह रहा था उस टाइम कि मौसम थोड़ा सा इस बार ऐसे ही रहेगा, मानसून हल्का पड़ेगा। बट अभी जो रिसेंट वाली खबरें आ रही हैं वो यही है कि मानसून स्ट्रांग होता जा रहा है। एंड अगर गूगल भैया की माने तो गूगल भैया भी यही कह रहा है कि देखो कूलिंग एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट टू डेज। तो मतलब ये है कि देखो अगर इस टाइम आप लोग गाड़ी चला रहे हो, मौसम अगर अच्छा है, तो गाड़ी को कहीं पर रोक लेना किसी अच्छी सी दुकान पे जहाँ पर आपको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। एक दो दिन की बात है, जब बारिश हो रही है तो उसको एंजॉय करो, बट हाँ डेली का ऐसे रूटीन मत बनाना कि जैसी बारिश हो रही है आप जलेबी खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, समोसे खा रहे हो। इन सब चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, बट वंस इन अ टाइम चलता है। तो मैं तो ज़रूर मंगाऊंगा अभी और मैं भी ज़रूर खाऊंगा, और आप लोग भी अभी रेडियो महारानी सुनते जाइए। एंड हाँ, अगर कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल बाय, मतलब बाय गाने का नाम है, आदित्य वारदो आज की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: ओ,

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये मैच नहीं था, इमोशन था, क्योंकि आयरलैंड से सीरियसली अभी हार कर ही आई थी टीम इंडिया। दो T20 के मैचेस थे, दोनों में हार गई थी। फिर उसके बाद सबको लगा कि इस बार तो कुछ कमाल का हो जाएगा, मगर वो कमाल नहीं हुआ, और नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। पहला मैच बारिश में धुल गया, दूसरा T20 हुआ तो उसमें इंडिया ने 190 रन बनाए और 191 का टारगेट दिया, मगर फिर भी नहीं जीत पाए। तो यहाँ पर देखो, इंडियन टीम की अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग तो अच्छी ही करी थी। देखो, अभिषेक शर्मा ने अपनी तरफ से खूब अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 24 पे 43 रन। वहीं पर अगर ईशान किशन की बात करूँ, उस लड़के ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, 49 रन बनाए, 50 नहीं हो पाई। और वहीं पर मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा तिलक वर्मा की, भाई लड़के ने 11 बॉल खेली, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, 24 रन बनाए और आउट हो गया। नॉट आउट, माफ कीजिए, नॉट आउट रहे। बट यहाँ पर गलती कहाँ हुई? गलती ऐसी हुई कि भाई टीम इंडिया अच्छा स्कोर मेरे ख्याल से नहीं खड़ा कर पाई। और यहीं पर तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन बॉलर्स की भी, क्योंकि देखो जैसे ही हमारे बॉलर अर्शदीप सिंह बॉलिंग करने आए तो भाई इस लड़के ने आते ही 2 विकेट ले ली। पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट, मतलब जॉस बटलर, इन दोनों को पहले ही ओवर में चलता किया। और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब 2 विकेट तो गिर ही चुकी है, अब तो भाई इनकी टीम लड़खड़ा जाएगी। 1 रन पर 2 विकेट गिर गई थी, मगर फिर उसके बाद एक खिलाड़ी ने सब कुछ पलट दिया। उस खिलाड़ी का नाम था बेथल। भाई ये लड़का इतना कमाल का खेल रहा था और टीम इंडिया के हर बॉलर को इसने अच्छे से धोया है। 5 छक्के मारे, 5 चौके मारे और 76 रन की नाबाद पारी खेली है, तभी अपनी टीम को जिता पाया है। और यहाँ पर इंडियन टीम के बॉलर्स की मैं तारीफ करना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा जो तारीफ नहीं हो रही किसी की तो वो है रवि बिश्नोई की, क्योंकि 1 ओवर में 27 रन खाए हैं इस लड़के ने। नो डाउट टीम इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, मगर होमवर्क अच्छे से नहीं किया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखो, जहां पर हम लोग प्यार दिखाते हैं वहां क्रिटिसाइज भी तो कर सकते हैं ना थोड़ा सा। तो अभी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और उम्मीद पर ही हम लोग भी कायम है कि अगले मैच में कुछ तो अच्छा होगा, और शायद अगले मैच में सूर्यवंशी का भी बल्ला चलेगा। करेंगे इसके बारे में और बात, मगर इस गाने के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए। सुन

मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 साल का खिलाड़ी कुछ तो कमाल करके ही जाएगा टीम इंडिया से। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। 15 साल और 99 दिन ये एज है इस लड़के की, वैभव सूर्यवंशी की मैं बात कर रहा हूं, और इतिहास रच दिया है क्योंकि सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। टीम इंडिया से डेब्यू किया 15 साल और मात्र 99 दिन ये इस लड़के की एज है। सोचो 25 साल में क्या क्या नहीं कर जाएगा, और 25 साल का जब ये हो जाएगा तब तो इसने रिटायरमेंट भी ले लेनी है। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैच चल रहा है और मुझे एक चीज, मैच अभी नहीं चल रहा, मतलब मैचेस चल रहे हैं, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में पहली बार उतरा ये लड़का और इसने जोफ्रा आर्चर की बॉल पे जो छक्का मारा मजा से ही आ गया। तो मुझे लग नहीं रहा था कि अब ये लड़का रुकेगा, मगर फिर उसके बाद विकेट खो दी, और मुझे कहीं ना कहीं इसके बल्लेबाजी करने में ना थोड़ा सा डर सा दिखाई दे रहा था, लाइक डर रहा था, एक नर्वसनेस होती है ना, वो नर्वसनेस वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। क्योंकि देखो, इंटरनेशनल स्टेज है, अच्छे अच्छे इंसान का पसीना छूट जाता है, तो फिर ये तो एक छोटा सा लड़का ही है, 15 साल का ये लड़का। और बता दूं आपको, 15 साल में डेब्यू करने वाले और भी खिलाड़ी हैं, जैसे कि शेफाली वर्मा ने भी 15 साल की उम्र में डेब्यू किया था। और अगर हम लोग बात करें द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने जब डेब्यू किया था तब वो 16 साल के थे। तो ये है फर्क। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको, अभी T20 के लिए डेब्यू करने वाला सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बना है, क्या पता कल को वनडे के लिए भी डेब्यू कर जाए हमारा वैभव सूर्यवंशी, ये तो वक्त बताएगा। और अगर अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल जाएगा तब तो मजा ही तो आ जाएगा। चीयर्स। नहीं, चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, वापस अगर और बात करेंगे। और ये जो कल दोपहर में अंधेरा हुआ था उसके बारे में बात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल करेंगे उसके बारे में भी बात, मगर इस गाने के बाद। इकडिनो जेम्स और बादशाह की आवाज में आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तो फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये थे शब्द शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा के। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 9.6 पर। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज की तारीख 7 जुलाई। नो डाउट आज महेंद्र सिंह धोनी जी का भी जन्मदिन है, मगर साथ ही साथ हमें आज याद करना है कैप्टन विक्रम बत्रा को। उनकी शहादत कभी भी व्यर्थ नहीं गई। हम लोगों ने मूवी में भी देखा कि इस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया, मगर मूवी में जो दिखाया था वो शायद 50% ही था। तो अभी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है आप सभी को सुनाने के लिए, तो सुनिए इस रिकॉर्डिंग को।
1: And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success in the war, Ye Dil Maange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got more chaff.
0: तो ये थे कुछ शब्द कैप्टन विक्रम बत्रा के। तो पूरी रेडियो महारानी की टीम की तरफ से नमन करते हैं हम सब कैप्टन विक्रम बत्रा को। और मैं बस ये कहना चाहूँगा परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ जवान होते हैं इस देश के, कुछ वीर जवान होते हैं इस देश के जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाते, और उनमें से एक नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का भी है। तो आप लोगों को भी अगर कोई मैसेज भेजना है रेडियो महारानी के थ्रू हमें भेज सकते हैं आप लोग। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ, वापस आकर गाने और बातें ही चलते रहेंगी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आपको पता है कि क्विक कॉमर्स वाले दिन में या महीने में कितना कमा लेते होंगे? बहुत कम। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम हो गई है, ग्लासी था ये गाना जुग मस्ती की आवाज में, बहुत पुराना वाला गाना बट आज भी वाइब अच्छी देता है। एंड यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा और वो ये है कि देखो, जितने भी क्विक कॉमर्स वाले होते हैं ना, जो आपके घर में 10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं, काफ़ी बार इनके साथ अन्याय होता है। अन्याय ऐसे जैसे कि मान लेते हैं आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में आप लोगों ने देखा होगा या फिर शायद आपकी सोसाइटी में भी ऐसा ही होता होगा कि इनको लिफ्ट तक इस्तेमाल नहीं करने दी जाती है और फिर उसके बाद इनको काफ़ी बार ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 मिनट वेट करवाया जाता है। क्यों करवा रहे हो आप इनको वेट? एंड ना सिर्फ क्विक कॉमर्स वाले बट बाकी फूड डिलीवरी वाले जो पार्टनर्स होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, उनके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है कि उनको वेट करवाया जाता है। ज़रा सोचिए, अगर वो आपके पास ही इतना टाइम बिता देंगे तो फिर नेक्स्ट डिलीवरी के लिए जब वो जाएंगे तब भी तो उनका टाइम वेस्ट होगा ना। तो ज़रा इसके बारे में सोचिए आप लोग। और अभी फ़िलहाल मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए और अगर आप सोसाइटी के RW में हैं तो आप लोग उनसे बोलिए कि इनको भी लिफ्ट इस्तेमाल करने दिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि इनको लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने दी जाती। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर कमाई की बात करें ना, तो वीडियोस को साइड रख देते हैं, जो वीडियोस आती है ना जिसमें बोलते हैं कि क्विक कॉमर्स वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ज़रा इनके बारे में भी सोचिए। और कोई भी इंसान काम शौक से नहीं करता, ये वाला काम मजबूरी से करता है, ज़रा सोचिए इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए मिक्स मैशअप गाना फ्रॉम द मूवी धुरंधर 2, मतलब धुरंधर का मिक्स मैशअप है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था क्विक कॉमर्स के राइडर्स के बारे में, तो इसी बीच एक वीडियो आती है मेरे पास। आई डोंट नो AI इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने तुरंत मुझे ऐसी वीडियो दे दी। तो वीडियो कुछ ऐसी है जो कि इमोशनल कर रही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखो जो ये डिलीवरी राइडर्स होते हैं ना, मतलब डिलीवरी पार्टनर्स जिन्हें कहते हैं, जो 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंचा देते हैं, उसकी वीडियो आई है और वीडियो में दिख रहा है कि वो कह रहा है मेरी हफ्ते की कमाई बहुत कम है और मेरी दो दिन की कमाई 500 या 600 रुपए ही होती है, मगर इतने में ही उस लड़के के पास 15 रुपए की डिलीवरी के लिए 500 रुपए की टिप मिल जाती है। तो ये वीडियो देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ पर ना मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ उस दिन इस लड़के की कमाई 97 रुपीज़ हुई थी और किसी ने 500 रुपये इसको टिप दे दी। नो डाउट टिप तो पूरी की पूरी राइडर के पास जाती है, बट यहाँ पर मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या हम लोग टिप देते हैं, क्या हम लोग 10 रुपये अपनी जेब से दे सकते हैं टिप? क्योंकि काफ़ी बार होता है लोग देते हैं, बट मैं अगर सच्ची बोलूँ तो मैंने कभी आज तक टिप नहीं दी है, ना ही मेरे जानकारी में किसी ने टिप दिया आज तक। तो आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने कभी कुछ अमाउंट टिप का दिया है रेस्टोरेंट को छोड़कर? मैं बात कर रहा हूँ इन डिलीवरी राइडर्स के बारे में। तो एक बार ट्राई कीजिए कि आप लोग भी इनका दिन मनाइए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर KK की आवाज में गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बातें और गाने यही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

स्ट्रॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नेक की तदी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हेटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक ओ कैप बच्चे बच्चे गोराटे मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे स्लैप दस

0: है बादशाह। Let's go।
1: क्या आप लोगों ने इस वीकेंड अल्फा देखी? मैंने तो नहीं देखी और मैंने जैसे ही रिव्यूज पढ़े फिर मेरा देखने का मन भी नहीं किया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ एंड आलिया भट्ट उनके साथ शर्वरी भाई, दोनों की दोनों एक्ट्रेसेस दोनों बहुत सुंदर लग रही थी, साथ ही साथ उन्होंने बहुत अमेजिंग एक्टिंग करी है एंड साथ ही साथ फाइटिंग स्किल्स भी दिखाए हैं अपने। बट ये सब चीज़ें तो हमने ट्रेलर में देख लिया था। फिर बात करें अगर रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज सुनने में आए कि भाई फुल ऑन कॉमेडी हो गई थी हॉल में। हॉल में कॉमेडी इसलिए हो गई थी क्योंकि बिना सर पैर की चीज़ें होती जा रही थी सिनेमा हॉल में। तो यहाँ पर एक कैमियो भी आया हमारे वन एंड ओनली ऋतिक रोशन का। तो ऋतिक रोशन का जो कैमियो था वो कुछ सुपर सोल्जर टाइप का दिखा दिया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रेविटी और सारी साइंस को डिफाई कर देते, सारे साइंस के लॉज को डिफाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद मैं अगर मूवी की बात करूँ तो मूवी यशराज फिल्म्स की है, नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है मूवी में और काफ़ी अच्छा एक्शन भी दिखाया गया है। बट कुछ लोग कह रहे हैं वन टाइम वॉच है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वॉच करने लायक भी नहीं है। तो मैं किसी और के कहने पे नहीं जाऊंगा, मगर हाँ औरों की कही सुनाई बातें आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और उनमें से एक बात तो ये भी बता रहे हैं लोग कि स्पाई यूनिवर्स दिखाया गया है जिसमें एक पड़ोसी मुल्क का आदमी इंडिया में रह रहा है पिछले 20 सालों से और इंडिया वालों को पता नहीं चला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये चीज़ दिखाई गई है फिल्म के अंदर एंड एक फाइटिंग सीन भी है जिसमें ऐसा हुआ है कि आलिया भट्ट और शर्वरी के बीच में फाइट होती है और शर्वरी उसे समझाती है आलिया भट्ट को कि देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ। एंड आलिया रिप्लाई करती है मुझे तो पहले से ही पता था। अरे जब पहले से ही पता था तो फिर फाइट क्यों करी? क्योंकि वन एंड ओनली फाइट सीन ही एक्साइटेड है, एक्साइटिंग है पूरी मूवी में। चलिए ये तो था मेरी तरफ से आप तक पहुंचाने वाला रिव्यू जो कि बाकी लोगों ने दिया। अब अगर आप लोग ये मूवी देखकर आ चुके हैं तो आप लोग जरूर बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये मूवी। नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए एक मिक्स मैशअप गाना सुनिए। इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

बारिश के बाद मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा लग जाता है, मगर बारिश के साथ साथ आती है एक और चीज और जिसने सबको सब कुछ याद दिला दिया, और वो है ओनली एंड ओनली मच्छर जो रात को आके गाने गाते हैं गानों के पास। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो बारिश शुरू हो गई है और ये पता लग गया कि हाँ मच्छर वापस आ चुके हैं। तो मच्छर तो वापस आए हैं, मगर जैसे ही बारिश हो रही है स्टार्ट, मानसून स्टार्ट हो चुका है, अब जगह जगह पानी भरना शुरू होगा, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके घर के आसपास अगर कहीं पर भी पानी जमा हो तो उसको खाली कर दें, उसको साफ कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसमें आप लोग मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जमा हुआ पानी जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पेट्रोल हल्का सा डाल दें। आई नो बहुत महंगा है अभी, बट स्टिल हम लोग डाल सकते हैं पेट्रोल थोड़ा सा, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, एक ढक्कन पेट्रोल भी डाल दोगे ना वो भी बहुत हो जाएगा। एक्चुअली वो सर्फेस एरिया थोड़ा सा बढ़ा देता है, और कुछ भी मतलब साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाएंगे, बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर पानी जमा होगा वहाँ पर डेंगू और मलेरिया का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इन तीनों के मच्छरों को इस बार तो हम लोग जन्म ही नहीं लेने दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा जानलेवा है ये बीमारी। जब भी किसी को हो जाती है, भगवान ना करे किसी को भी हो, बट जिसको होती है ना उस इंसान को पता है कि कैसे अंदर से शरीर को नुकसान पहुंचाती है ये बीमारी। तो इन मच्छरों को पनपने ना दें, अपने घर के आसपास कहीं पर भी पानी जमा हुआ होते हुए देखते हैं तो उसको साफ करवा दें। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूं और उसके बाद वापस आकर बात करते हैं फरीदाबाद के बारे में और भी चीज़ें, क्योंकि जाम हर जगह लगा हुआ है इस टाइम।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

बारिश होते ही एक चीज तो कॉमन है और फरीदाबाद में जाम लगना वो भी कॉमन है। मैं दो चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, एक तो है पानी भरना, वो कॉमन है, और दूसरा है जाम लगना। तो ये दोनों चीजें तो आम बात सी हो गई है और फरीदाबाद के लोगों को तो ये आदत सी हो गई है। और मुझे लगता है आप लोग भी गाना गा रहे होंगे अभी, अब तो आदत सी है मुझको। मुझे पता है गंदा चौक था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। सोनू निगम की आवाज में था ये गाना बिजुरिया। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखो, हमारे घर के आसपास, भले ही आप सेक्टर 21 में रहते हो, भले ही आप 29 में रहते हो, भले ही आप सेक्टर 15 में रहते हो या फिर NIT में रहते हो या फिर आप सेक्टर 3 या बल्लभगढ़ में रहते हो, तो आप लोग रोजाना की डेट में अगर आप जॉब पे जाते हो तो आप लोग जाम फेस करते होगे। और ऊपर से बारिश आ जाए तब तो फिर मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि फिर ट्रैफिक जाम डबल हो जाता है। जैसे कि कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जो बारिश के टाइम बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है नीलम फ्लाई ओवर, नीलम गोल चक्कर बोल दूं, इन दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है। इसके अलावा बड़खल फ्लाई ओवर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाम रहता है। और फिर उसके बाद करें अगर मेन मथुरा रोड की, तो जैसे ही आप क्राउन प्लाजा क्रॉस करते हैं और आप NIT के लिए टर्न लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको सर्विस लेन पे बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। एंड यही सेम टू सेम सीन मिलता है हमें देखने को बल्लभगढ़ में भी और साथ ही साथ बाटा में भी। तो ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं। अगर आप इन सब जगह पर फंसे हो तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम है, ताकि मैं सभी पब्लिक को बता दूँ कि ये रास्ता अवॉइड करें। तो मेरा नंबर है 9654896896। सिंपल सा नंबर है, बस 9654 याद रखना है आपको, बाकी तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 89.6। तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर बताइए और अपना नाम जरूर बताइएगा कि आप लोग कहां पर ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो अरूड।

0: मुझे एक चीज तो अच्छे से पता है कि जिस दिन मैं अपने शेयर मार्केट के सारे स्टॉक्स बेच दूंगा नुकसान में, उसके अगले दिन से ही वो सारे के सारे शेयर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरे साथ एक बार नहीं, बार बार हुआ है, और मुझे ऐसा पता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे इतनी रात को मैं शेयर मार्केट की बात क्यों कर रहा हूं? जस्ट बिकॉज अभी ना सैलरी आ गई है, मेरे आधे दोस्तों की और आधे कलीग्स की सैलरी आ गई, बट मेरी सैलरी नहीं आई है। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, फिर मुझे इन्वेस्टमेंट से ही याद आया कि हाँ मैंने भी इन्वेस्ट किया था और जो माइनस में चल रहा है अभी, बट मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन वो प्लस में ज़रूर जाएगा। ऑल्दो मुझे सब लोग कह रहे कि बेच दे, बट मैं ये बात आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी और की दी हुई एडवाइस पर कोई भी स्टॉक मत खरीदना, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही करा था। और अब आप लोग कह सकते हो मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूक फूक के पी रहा हूँ, बस इसीलिए आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज़ किसी और की एडवाइस पर स्टॉक्स मत खरीदना। खुद से पढ़ना, एनालाइज करना, सब कुछ पढ़ना अच्छे से, फिर उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजने वाले हैं, उन्हीं में से एक गाना चला रहा हूँ मौसम को देखते हुए, मतलब कि जलेबी बेबी। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से कल शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वापस आएगी गीत विदेश कुबाजियां, खूब सारी बातें और प्यार भरे गाने लेकर। बाय बाय, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: Got what I want is Sony, yeah. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है, और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रखीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिया। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमेच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग से ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है। लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। देखो देखो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराइए,
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ऐ जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजा सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं, आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक्के।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: है अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

0: हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
1: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

शर्माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाए और अपनों की हंसी को बचाए। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदे सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, तो एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम होकर के, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान है, वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद